0: MIAFM. The longer you listen, the later it gets.
1: Griffith's local community station, 95.1 to MIAFM. Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, to MIAFM.
2: Hey, got time to listen.
1: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Bobby's Punjabi Talk Show. Hashtag part of your community.
3: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़ा अपना बॉबी हाजिर हाँ थोड़े फेवरेट शो बॉबी पंजाबी टॉक शो लैके, तो शुरू कर दें अज्ज बहुत ही प्यारे इस बहुत ही प्यारे शब्द के नाल, आर नानक पार नानक, जिसनों गाया दिलजीत दोसांझ ने। तो उस तो बाद आप चलावे गुरमत कथा विचार, जो कि 8:45 तक चलनगे। तो 8:45 तो आप थोड़े सोंग्स की रिक्वेस्ट लवेंगे। रिक्वेस्ट भेजने लिए साड़ी वैबसाइट पर तुम जा सकते हो www.2miafm.org.au ते उत्थे जाके तुसी जो भी पंजाबी सोंग सुनना चाहते हो 8:45 तो 10 बजे तक तुसी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो शुरू कर दें अज्ज शो इस बहुत ही प्यारे शब्द के नाल, आर नानक पार नानक। सोंग्स की रिक्वेस्ट लवेंगे। रिक्वेस्ट भेजने लिए साड़ी वैबसाइट पर तुम जा सकते हो www.2miafm.org.au ते उत्थे जाके तुसी जो भी पंजाबी सोंग सुनना चाहते हो 8:45 तो 10 बजे तक तुसी रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो शुरू कर दें अज्ज दा शो इस बहुत ही प्यारे शब्द के नाल, आर नानक पार नानक।

मैं तां सजना खामोश होई रहनी हाँ वी लोकां अगे घट बोलदी मैनू अज भी ने खंभ लग जांदे जे लंघा तेरे पिंड कोल दी।